0: पिज्जा टू गो बेस्ट पिज्जा इन द टाउन पिज्जा टू गो तंदूरी पनीर पिज्जा बटर चिकन पिज्जा चाट पिज्जा मखनी पनीर पिज्जा शाही पनीर पिज्जा कले पिज्जे नहीं जिथे तुसी फिश पकौड़ा बेस्ट सोया चाप मलाई विंग्स क्रंची मोमो मलाई मोमो सुन के आया ना मुंह विच पानी। सो अज अपने यारां दोस्तां ते परिवार दे नाल कुछ वधिया ते क्वालिटी वाला खाण नूं दिल कर रहा ना तां इको एक नाम याद रखो पिज्जा टू गो बेस्ट पिज्जा इन द टाउन। तुसी पहुंचो मैकलॉगन सैंडलवुड वाली लोकेशन ते या तुसी पहुंच सकदे हो टू काउंटी कोर्ट ब्रैम्पटन नियर शेरडन कॉलेज वाली लोकेशन ते या तुसी चिंगूजी एंड क्वीन वाली लोकेशन ते पहुंच सकदे हो नो फ्रिल वाले प्लाजे दे विचों। इको एक नाम याद रखना पिज्जा टू गो स्वादला ते क्वालिटी वाला पिज्जा पिज्जा टू गो 905-840-9696 905-840-9696।
1: चुल्ले ते पकती रोटी सच है
2: मिट्टी चुगदी फसल सच है
1: गुरु दी बाणी सच है सतगुर प्यारे सच्चे दी बाह फड़दे हुंदे ने।

क्या बात है। सो स्टूडियो का नंबर है 905-673-3337। बहुत यार कल नूं एक इतिहासिक दिन है टोरंटो दा। रोनाल्डो, क्या बात है, रोनाल्डो साहब पहुंच गए, कहते अज टोरंटो है। साढ़े स्टूडियो के बाहर रोनाल्डो होना दा प्लेन उतरिया, रोनाल्डो ने सानू भी फिर सलूट मारिया कि नवी मैं आ गया, मिलते हैं जल्दी। सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो कल खेड रहा भी लूका मॉडरिक दे नाल। सो पोर्चुगल क्रोएशिया का बड़ा ही लैजेंडरी मैच, दो बड़े लैजेंडरी प्लेयर, दोनों का अखीरला वर्ल्ड कप होगा, अखीरला मैच भी कल एक का होगा, या तो रोनाल्डो का या तो फिर मॉडरिक का। बट बहुत सारा उत्साह, बड़ी एक्साइटमेंट, बड़ा क्रेज के कल मैच है। सो कल 7 बजे टोरंटो के स्टेडियम के यह मैच हो रहा है। सो तुसी अपनी अपनी टिकटां जिन्होंने लै लिया, ठीक है, जे किसी कोई वादू की टिकट हैगी सानू दस्सियो, असीं भी जाए ही यार। ऑनेस्टली मैं देख रहा सी, मैं कि हुण यार इज इट वर्थ इट कि आपां इन्ना पैसा लईए टिकट दे उत्ते, जे तां कोई स्पोंसर टिकट मिल जावे होर गल है, बट इन्ना बंदा सोचदा यार, या तो कोई बहुत ही कट्टड़ फैन होवे। मैं इन्ना क्रेजी फैन नहीं हैगा बट फिर भी इट्स बड़ा एक्साइटिंग मोमेंट है। खैर, सो जे जा रहे हो मैच के उत्ते मुबारक, बहुत ही एक हिस्टोरिक मैच तुसी देखोगे। सो प्रोग्राम पंजाबी तरह 905-673-3337 अपना नंबर है, 905-673-3337 गलबात थोड़ी साड़ी थोड़ी हो सकती है। एक तो तुसी मैसेज याद रखो पैशन रूफिंग का, नवी रूफ लगने वाली है, रूफ की कोई रिपेयर है, पैशन रूफिंग, पैशन रूफिंग की टीम नूं तुसी कॉल करो। पैशन रूफिंग थोड़े लिए हाजिर है, 647-919-9413। पैशन रूफिंग दे गुरलाल भाई जी, रूफ कितने लीक होगी, रूफ की कोई तुसी अगर रिपेयर करवानी है, नवी रूफ लगवानी है, 647-919-9413 6479199413 6479199413 पैशन रूफिंग।

0: इस साल तो इंश्योरेंस बहुत महंगी होगी। घर ते ऑटो दी इंश्योरेंस दी किश्तां ने सारा बजट हिलाता।
1: ओ जी, अमनदीप कौर इंश्योरेंस एडवाइजर ही हुंदी आ, कोई फिकर नहीं। ए देन के बेस्ट रेट्स इन द मार्केट विद फुल कवरेज।
0: होम, ऑटो, कमर्शियल, ट्रकिंग ते बिजनेस इंश्योरेंस ले कॉल करो इंश्योरेंस एडवाइजर अमनदीप कौर होरानू एट 416-618-2761 416-618-2761।
2: नेशनल कबड्डी एसोसिएशन ऑफ ओंटारियो अते कैन सिख कल्चरल सेंटर बड़े मान नाल पेश करदे हन टोरंटो कबड्डी सीजन 2026। मिती 4 जुलाई 2026। स्थान CA सेंटर, ब्रैम्पटन ओंटारियो। आओ वेखिए कबड्डी दे शानदार मुकाबले जिथे नामवर खिलाड़ी अपना जौहर दिखाउणगे। आई हुई संगत लई लंगर अते शबील दा विशेष प्रबंध कीता गया है। आओ सारी मिलके मां खेड कबड्डी दा आनंद माणिए अते खेडां नूं होर उत्साह दईए। होर जानकारी लई संपर्क करो गोरा धनोआ 416-230-4000, राणा बरियार 647-271-4176।
3: नाले चोपड़ियां नाले दो दो।
4: आहो जी, मेनू भी पता, नाले ग्रोसरी नाले वधिया खाना, यानी दाना मंडी। दाना मंडी जिथे हर तरह दी इंडियन ग्रोसरी, दाला, मसाले, पिकल्स, चौल, चाह पत्ती, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स,
3: डेयरी प्रोडक्ट्स, स्नैक्स, फ्रेश चिकन, बीफ, गोट मीट, सब कुछ मिलूगा। इना दे रेस्टोरेंट विच तुसी परांठे, चना भटूरा, वेज थाली, वेज बिरयानी, बटर चिकन विद नान दा स्वाद लो।
4: एक बार आओगे ते बार बार आओगे।
3: अनबीटेबल प्राइसेस, सेल ऑल टाइम। दाना मंडी, 1729 Queen Street, East Brampton, Major Intersection, Queen and Bramley.
4: Call Gagan or Gurinder at 905-286-9257.
5: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
6: पर हुन थोनू कार लेन ली रेडी करनगे। Mortgage the King, Girish Sharma.
7: Residential, commercial, refinancing, debt consolidation, second, third mortgages, private funds.
6: सब ले याद रखो Girish Sharma. Pre-approval ही नहीं, closing तक देंगे पूरा साथ. Dealing with all banks.
7: Call 647-606-8110.
6: Or visit sharmamortgages.com.

0: 7997877 थैंक यू जी।
1: ट्रक एक्सीडेंट ते रब ने हाथ दे के बचा लिया
2: ते कार दे खर्चिया नु हरजीत जंजुआ दी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ने संभालिया। अपने भविष्य नु सुरक्षा करन ते प्रेजेंट दे पीस ऑफ माइंड ले आज ही संपर्क करो हरजीत सिंह जंजुआ।
1: हर तरह दी वधिया इंश्योरेंस पॉलिसी ले याद रखो इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट हरजीत जंजुआ दा नाम। लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी, क्रिटिकल इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस, विजिटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, किड्स प्लान, RRSP, RESP, TFSA, कॉल करो
3: 6475 ====== 6475 कर सकते हो 647-835-5294 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

0: वीजे री सुपरवीजा इंश्योरेंस लेनी है ते बंटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है। मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है।
1: शमी पठल होरा ने तुहाडा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है।
2: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल।
3: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दियां बेस्ट डील ले। याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
2: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: ओहो, सर्दी च हीट नहीं चलती ते गर्मी च एसी।
2: ले आपा हुणे करदे आ संधू साहब नाल गल ते करदे आ मसले दा हल।
1: एसी फर्नेस, गैस लाइन, वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन, नव एयर कंफर्ट ते जितेंद्र संधू नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल 647-706-6640
3: 647-706-6640
4: इंडियन पंजाबी बाजार 115 फादर टोबन रोड ब्रैम्पटन विच भारतीय ग्रोसरी दा भंडार इंडियन पंजाबी बाजार जिथे ताजे फल ते सब्जियां दालां मसाले ते आटा गल की थवाडी ग्रोसरी दियां सारियां लोड़ां पूरियां कीतियां जांदियां ने। तुसी उहनां दी मीट शॉप तों मच्छी, चिकन ते गोट मीट भी खरीद सकदे हो। इन्ना ही नहीं, मिठाइयां ते टेक आउट भोजन दा भी प्रबंध है। भारतीय ग्रोसरी मीट अते मिठाइयां लई सदा इक नां याद रखो, इंडियन पंजाबी बाजार।
5: CWC Immigration is one of the largest immigration companies and they have 4 offices in Canada and 12 in India. I know Mr. Kheran personally, I have gone to their office and I have met their clients. I feel that they believe in quality and they are dedicated to providing competent services to their clients.
6: Sitariyan di pasand, thwadi sariyan di pasand. CWC Immigration, Express Entry, Work Permit, Family Sponsorship, Immigration Appeals, Immigration de har masle da hal. CWC Immigration, 905-670-4444.
7: स्टारगेट लॉजिस्टिक्स नॉर्थ अमेरिका दी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। हायर कर रहे ने AZ ड्राइवर्स। जेकर तुहानू भी है काम दी पाल ता अज ही संपर्क करो स्टारगेट लॉजिस्टिक दे नाल। वर्क लोकली या क्रॉस बॉर्डर। सर्व कर दे ने GTA, मिडवेस्ट, मॉन्ट्रियल ते नॉर्थ अमेरिका दे विच। स्टारगेट लॉजिस्टिक अज ही कॉल करो 905-564-9992
8: GTA the best transportation companies nal mauka mil reha hai vadhiya dollar kamaan da te gaddi chalaun da.
9: Alpha Trans nu chahide ne AZ drivers, team driver ate owner operator. Vadhiya pay package ate 12 mahine kam te maan satkar vi pura karde ne.
8: Aj hi sampark karo Lakhi Saini nu 905-799-1525, 905-799-1525 ya visit karo 105 East Drive, Brampton.
10: CCA ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲਾਂ, ਪਾਵਰ ਸੇਲ ਨੋਟਿਸ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੀਤਿਆਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
11: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
10: ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨ।
9: हर तरह के टेस्टी इंडियन फूड अते स्वीट्स ले याद रखो द्वाबा स्वीट एंड रेस्टोरेंट।
8: 4 लोकेशंस तो तुहानू सर्व कर देने 100% प्योर वेजिटेरियन ते फ्रेश फूड एंड स्वीट्स ले द्वाबा स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। करो डाइन इन, टेक आउट, टिफिन सर्विस दे नाल नाल केटरिंग अक्रॉस GTA। बल्क ऑर्डर ली साडी फैक्ट्री विजिट करो।
12: ओ जी हुण तुसी भी देर ना लगाओ, ग्रीन वैली सुपरमार्केट आओ। सुपर डील्स दे नाल ग्रोसरी ते डॉलर बचाओ। वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स, मीट, चिल्ड बियर, डाइन इन ते टेक आउट भी कर सकते हो। देर रात तक हफ्ते दे सत्तो दिन खुलता है। तंदूरी बाइट चाट एक्सप्रेस विच बैठ के वधिया स्वादले फूड दा मजा उठाओ। वधेरे जानकारी ते ऑर्डर लई कॉल कमाओ 905-913-1666, 905-913-1666 या पहुंचो 11665 McQueen ड्राइव मेफील्ड दे नुक्कर ते। दुनिया विच किते भी घूमन फिरन लई या सस्ते टूर पैकेजेस लई याद रखो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल 905-678-1200 905-678-1200। कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल दो लोकेशन तो अपनियां सेवावां प्रदान करदे ने 2883 डेरी रोड ईस्ट मिसीसागा, सेकंड लोकेशन 4550 एबनेजर रोड ब्रैम्पटन।

सतगुरु होए दयाल तो सरदा पूरी है, सतगुरु होए दयाल नकाब हो झूरी है, सतगुरु होए दयाल तो दुख ना जानी है, सतगुरु होए दयाल तो हर रंग माणी है। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों माणते हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत चढ़ती कला वाली सवेर के खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरा लैके मैं थोड़ा अपना मेज़बान प्रभ संधु और मेरे नाल पंजाब की धरती तो निरपक्ख निर आवाज़ रमेश हुशियारपुर जी जुड़ चुके हैं। तो रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरा का आनंद माणते हैं। स्टूडियो दी घड़ी के मुताबिक 7:04 हो चुके हैं। थोड़ा साढ़ा साथ होने तो लैके 8 बजे तक बने रहना।

सतगुर होई दयाल सरदा पूरी है, सतगुर होई दयाल न कबहू चूरी है, सतगुर होई दयाल त दुख ना जानिए, सतगुर होई दयाल त हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों माणते हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत चढ़दी कला वाली सवेर के खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहर लैके

0: multiple locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस जिथे कि मैं भी गड्डियां नु लेके जाना रिपेयर दे लई रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी कम करदे आ कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल सेफ्टी सर्टिफिकेशन उबर लिफ्ट दी सेफ्टी करवानी है स्पेशलाइज करदे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज्ड डायग्नोस्टिक कम च स्टील्स एंड मेलनी रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478-905-799-1478-909

0: रात हमें छड़ दिनी आ पर जनाब चले किथे हो?
1: मैं चलिया स्काईडम ऑटो एंड बॉडी सेंटर जेडे कर देने मेरी कार दी केयर बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर
0: ए होई हन स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज जेना दिया जीटीए दे विच चार लोकेशन ने मेरी फ्रेंड अनु दी एक्सीडेंटल कार भी फिक्स करके नवी बनाती सी
1: जी हां कारा दे नाल नाल बसा अते वड्डे ट्रकां दी हर तरह दी रिपेयर अते बॉडी वर्क दा काम भी कीता जांदा है रेट वास्ते बेस्ट पैकेज प्रोवाइड कीते जांदे ने बतेरी जानकारी ले कॉल करो 905 874

0: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਮੋਰਗੇਜ ਜਾਂ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਮੋੜੋ 1200 ਡੈਰੀ ਰੋਡ ਈਸਟ ਯੂਨਿਟ 22 ਮਿਸਿਸਾਗਾ 416-804-2015 416-804-2015
1: कि तुसी भी अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स नो सुपर वीजा या विजिटर वीजा ते कनाडा लेके आ रहे हो ते फिर प्लैनेट इंश्योरेंस तो सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर इंश्योरेंस प्लान लेके उन्हां नू प्रॉपरली प्रोटेक्शन दे साडे अप्रूवल फास्ट ने कवरेज तुहाडी नीड दे मुताबिक है ते कॉम्प्रीहेंसिव प्लान है जिहड़ा ए सारा कुछ तुहानू मिल सकदा है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस ते तुसी मैनू कॉल करो एदे लई नंबर है 416-524-3535 416-524-3535 विदे छाबड़ा फ्रॉम प्लैनेट इंश्योरेंस
2: HK Movers का हो साथ लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात HK Movers होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी बिग और स्मॉल वी मूव इट ऑल वी ऑल्सो शिप कार्स वी ऑल्सो डू स्टोरेज 30 इयर्स एक्सपीरियंस वी सर्व विद अ स्माइल HK Movers गिव अस अ कॉल मिस्टर हरमिंदर 416-524-6704 416-524-6704
3: हासिल फ्री मूविंग के लिए HK Movers
4: IPL चल रहा है ओनली ऑन करो स्ट्रीम वॉच सक्सेसफुल IPL सीजन ओनली ऑन करो स्ट्रीम www.karostream.com और कॉल 905-204-1313
5: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number one station, AM

0: गवर्नमेंट आज बारिश कर रही है ग्रांट्स की, हम एक जरिया है, गवर्नमेंट आज भी बारिश कर रही है ग्रांट्स की, मिस ना करें आप इस चीज को, एंड देन कॉल करें एंड फायदा उठाएं।
1: तो अड्डा जे पहला भी कोर्स होया तां भी कोई गल नहीं, तां तुसीं दोबारे कोर्स दे विच एनरोल हो सकदे हो, ते जे तुसीं 65 70 साल दे हो पेंशन भी लै रहे हो तां भी एनरोल हो सकदे हो, कॉलेज दी फीस भी सरकार पे कर रही है।
0: बिल्कुल जी, कॉलेज की फीस भी गवर्नमेंट पे करती है।
1: ते हुण इह बस गिणती दे दिन रह गए भाजी।
0: और बिल्कुल ऐसी ही बात है, लाइक जब गवर्नमेंट इतनी चीजों में इन्वेस्ट करती है, चाहे वो LGBT को फंडिंग 100 मिलियन की, L2 नाम की एक नई रेलगाड़ी बना रहे हैं ये मॉन्ट्रियल से लेके टोरंटो तक, $90 बिलियन उस पे लगा रहे हैं, जब गवर्नमेंट सिर्फ 4 बिलियन एजुकेशन पे लगाती है, तभी हमें लगता है कुछ हैरानी हो रही है।
1: इतने 4 बिलियन एजुकेशन दे?
0: बिल्कुल जी।
1: उधर कितना मां?
0: उधर लाइक 90 बिलियन ट्रेन बना रहे हैं मॉन्ट्रियल से लेके टोरंटो तक के लिए,
1: मतलब 4 बिलियन तो फिर वो साफ ना
0: कुछ भी नहीं है,
2: कुछ भी नहीं है।
0: और आम लोग
1: नाले इन्हें भी बंदे पढ़े लिखे होंगे तो ये बात कमाओगे तो इन्होंने बात टैक्स पे करने के,
0: सही बात है
1: ना?
0: बिल्कुल, अपने देश में सिटीजन पे। ऑन अदर हैंड यूक्रेन को 60 बिलियन डॉलर चला गया है, जब उनको गवर्नमेंट क्रेडिट चेक के बिना ग्रांट और लोन दे सकती है, आपका जब चेक नहीं करी तो हमें लगता है कुछ
1: रेजिडेंट हो तो
0: आज कर रही गवर्नमेंट स्पेंड, कल नहीं कर रही, ऐसा तो है नहीं कि हमने आज ऑफर लगा दिया।
1: पर ये इन्हें ये नहीं चाहिए था सरकार ने, भी थोड़े जब बंद का तो करती है, इन्होंने ग्रांट का तो बंद कर दिया,
0: बंद इन्होंने 14-15 दिन रह गए हैं,
1: तो बंद का तो करने को कहे क्योंकि बाहर लेटर लोटर भी नहीं चलती रहने दो, बंदे औखे है हजे।
0: बिल्कुल, बंदे
2: तो बहुत होंगे, तो बहुत पैसे देंगे जिन्होंने
1: लाने रहे।
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब लाइक आई डोंट नो, अगर आज अगर 10 बंदों से मिलता हूँ मैं अपने ऑफिस में, तो 6-7 बंदे बड़े फाइनेंशियल ट्रबल से गुजर रहे होते हैं, और फंडिंग का नाम सुन के हमें लगता है भाई क्वेश्चन मार्क, कहीं कुछ कैच है,
1: हाँ भी कुंडी हो गई,
0: हम तो कोई कुंडी वाला काम करते ही नहीं, ठा करके गारंटीड स्टैंप लगा के
1: कुंडी हो गई।
2: बिल्कुल,
1: $200
0: देनी है
1: कम तो बाद देनी है, कुंडी
0: $199 या $499,
2: कोई क्रेडिट चेक नहीं,
0: गवर्नमेंट आपको फंडिंग दे रही है एजुकेशन के लिए, हम सिर्फ एजुकेशन फंडिंग में डील करते हैं, हम कुछ और जिसमें काम में सेटिंग नंबर हिलते हम करते ही नहीं है।
1: ਮੈਂ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੰਡੀ,
0: ਕੋਈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿਡਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਮ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਆਪ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਤੇ ਆਸਾਨ ਸੇ ਕੋਰਸ, ਫੁੱਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਕਰਤੇ, 2-3 ਘੰਟੇ ਆਪ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਫੋਨ ਪੇ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੇ ਲਗਾਤੇ ਹੈ, ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫੰਡਿੰਗ ਆਪਕੇ ਖਾਤੇ ਮੇ ਆਤੀ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਖਾਤੇ ਮੇ ਆਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਲਾਈਕ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਸਾਨ ਸੇ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਜ ਕਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ, 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਬਹੁਤੋਂ ਕੋ ਅਸੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਫਿਸ ਹੈ ਹਰ ਅੰਡਰ ਡੇਰੀ ਪੇ, ਕਾਲ ਕਰੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਏ,
1: ਪੀਆਰ
0: कम से कम अभी 200 पड़े हैं और 70 खत्म हो गया
1: है।
0: 400 37 200 64 31 75 400 37 200 64 31 75 400 37 200 64 31 75
1: कितनी बार हो गया? 4 बार हो गया।
0: देखो इसमें लोगों का फायदा है, लोगों का फायदा हाथी जितना, हमारा फायदा चींटी जितना है, बिल्कुल ठा करके, कोई कैच नहीं है, काम होने के बाद लोग ब्लेसिंग कहते हैं सर आप फीस बढ़ा लो अपनी, हमारे बारे में सोचते हैं आगे, ब्लेसिंग देते हैं हमें, सर आप फीस बढ़ा लो अपनी, आप कैसे मतलब, तो इट्स वेरी गुड थिंग।
1: माया पहला बंदा देखे जेड़ा लोकां बारे सोचदा,
0: हमने ओएसटी भी
2: नाले आम तौर ते पगे नहीं, मैं कनाडा जाके अपना अपने बारे सोच लो, पर ये पहले बंदे है जेड़े लोकां बारे बात सोचदे
0: हैं। ना मैंने कोई बड़ा घर ले रखा है, ना मेरे को बड़ी गाड़ी का शौक है, आम इंसान की तरह रहते
1: हैं। नहीं सिंपल था मतलब, ना मतलब तो है नहीं,
0: मैंने तो ब्रांडेड गाड़ी नहीं रखी
1: है,
0: सिंपल रहना चाहिए।
1: एक मैंने मिला सी एल्ट्रा, इदा वो मैंने मिला, मैंने कहता वो टॉप दा रियल्टर है ना, मैंने गोरा सीगा, मैंने कहता जब मैं घर दबाना होवे उदो मैं आ लेके आऊं ना, गड्डी मेरे को बड़ी भी हैगी है, कहता गड्डी मेरे को बहेगा क्यों, कहता ऐ भी फिर अगला कहता कमीशन जो दे दियो कुछ थोड़ा मोटा, ओए मैंने दंद दंद दस्ता कहता उदो मैं गड्डी उदो गड्डी है जदों गड्डी इधर ले आंदे ना, पता नहीं रिवाइज करके आ
0: जाए, सिंपल सी लाइफ रखनी चाहिए।
1: हां सिंपल, 437
0: 264 31 75
1: ओके
3: जी सर,
1: की हाल चाल है?
3: बिल्कुल सर, चढ़दी कला।
1: मैं खुश नहीं भरिया तेरे तो बड़ा, अज नहीं मेरे मन पसंद की कोई डील कल दे ली नहीं आई, कल हूं ज्यादा तू चाह पिलाने तो डर गया, पता नहीं हूं रब जाने की गल बात है, गल नहीं बनी,
3: नहीं बनी
1: गल, आई नहीं है गल, या होनी गल
3: बड़ा बड़ा ये गल भाजी,
1: जे बना सकदा देख ला, हजे मिनट दवो हैगे आ,
3: बिल्कुल सर, कनेडा डे वाली डीलां वीकेंड टाइम तक चलनियां परिवारां लई, लो कड़ाके कड़वी डील आउण लगी आ।
1: हां
3: बहुत बारी सुने होना भी तुसी वड्डी चीज बाय करो तो नाल छ ਛੋਟੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਰਨੀਚਰ ਆ, ਕੁਈਨ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬੈੱਡ 7-8 ਸੌ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਭਾਜੀ, ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ?
1: ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ,
3: ਦੱਸੋ
1: ਆਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ 100% ਆਉਂਦਾ ਬੇ,
3: ਕੁਈਨ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬੈੱਡ ਸਿਰਫ 99 ਡਾਲਰ ਦਾ।
1: ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ,
3: ਨਾ ਨਾ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਹਾਲੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਬਸ ਨਹੀਂ,
1: ਬਸ ਕਰ,
3: ਕਿੰਗ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬੈੱਡ ਫ੍ਰੀ।
1: ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ
3: ਮੇਰੀ
1: ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੈਲੋ
3: ਜੀ ਸਰ,
1: ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਫ੍ਰੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ?
3: ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਬੈੱਡ ਫ੍ਰੀ,
1: ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ,
2: ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ, ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ।
3: ਦੋ ਬੈੱਡ ਕੁਈਨ ਤੇ ਕਿੰਗ, ਇਹ ਆ ਗ੍ਰੈਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਰਨੀਚਰ
1: ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ। ਇਹ ਅੱਜ ਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ?
3: ਅੱਜ ਆ ਜਾਣ, ਕੱਲ ਆ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ ਸਰ।
2: ਅੱਜ ਭੇਜਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ।
1: ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਘੁਮਾਉਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ।
2: ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ,
3: ਸਭ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਰ।
2: ਸਮੋਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।
3: ਆ ਗਿਆ ਜੀ,
1: ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ,
2: ਵਾਕਈ ਗ੍ਰੈਂਡ।
1: ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ
0: ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ,
1: ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ?
0: 437-264-3175
1: ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡੇ ਲਾਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਰੱਖਣੇ? 437-264-3175 ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਹੁਤ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।

0: फुली ऑनलाइन कोर्सेज हैं और आप फंडिंग हासिल करें। हमारे पास हार्ड कोर्सेज भी हैं जैसे HVAC, ECA, PSW, उनमें कॉलेज जाना पड़ेगा, वो ऑनलाइन नहीं है
1: जी।
0: और उसमें गवर्नमेंट ही फीस पे कर रही है, आपकी जब से फीस नहीं जा रही है गवर्नमेंट फीस पे कर रही है, आपको सेपरेटली आपके अकाउंट में 30,000 से 100,000 की फंडिंग आती है जी। और इसमें लाइक प्रोग्राम गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है, 14 डेज बाद लोन आएगा, गारंटी आएगी। आज अगर फैमिली ऑफ 5 है, हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं, 100,000 की फंडिंग आती है, 50,000 उसमें से ग्रांट है जो वापिस नहीं करना, 50,000 जो रेस्ट है वो ऑप्शनल लोन है जो कि 0% पे एक साल के लिए और 1.5 साल बाद लाइक उसका इंटरेस्ट रेट 2.5% है साल का। और बाइक की लाइक अगर फैमिली ऑफ 2 है तो अप टू 45,000 की फंडिंग आती है, जिसमें से 25,000 ग्रांट मनी, रेस्ट इज ऑप्शनल लोन एट 0%। आप अभी एनरोल करें, रिटायर्ड कपल है, आपको बड़ा अच्छा बेनिफिट है इसमें। और हमारे ऑफिस आए 218 एक्सपो बुलेवर्ड पे, कोई मीठी बातें नहीं है, ऑन एयर और ऑफ एयर एक ही फीस है, 199 या 499। काम होने के बाद आपने अपनी ईमानदारी से देनी है, फंडिंग आपके अकाउंट में आती है, हमारे अकाउंट में नहीं आती। लास्ट वीक 29 बंदों की फंडिंग उनके खाते में गिरी है जिन्होंने मई में ज्वाइन करा था। आज भी 6 बंदों के अकाउंट में फंडिंग गिर गई है जिन्होंने मई में ज्वाइन करा था। लेट ना करें, कॉल करें, ऑफिस आए, नंबर 437-264-31-75, कॉल करें, असेसमेंट कराएं, ऑफिस आए, 437-264-31-75, 437-264-31-75, 437-264-31-75
1: जी। बहुत बहुत शुक्रिया, जरूर तुसी भी गलबात करो सारांश नागपाल जी के नाल। नंबर है यूनिक ग्लोबल एडवाइजरी इंक का, 437-264-31-75, 437-264-31-75 दे उपर तुसी कॉल कर सकते हो, सारांश नागपाल जी दे नाल तुहाडा संपर्क होएगा। रॉयल डिजिटल दी मैं जानकारी दे दें, जो कि तुहाडे लई हाई स्पीड अनलिमिटेड इंटरनेट तुहाडे लई लगा रहे ने, $55 दे विच 1.5 GB डाटा मिलूगा तुहानू। रॉयल डिजिटल दे नाल गलबात करो, $55 दे विच हाई स्पीड अनलिमिटेड इंटरनेट तुसी अपने लगवाओ। इन्हां दा लोकेशन हैगी है 80 मैरीटाइम ओंटारियो बुलेवर्ड, यूनिट नंबर 58, एयरपोर्ट रोड एंड क्वीन दी इंटरसेक्शन दे उपर लोकेटेड ने। ते नंबर 6472011313 दे उपर तुसी अमन जी दे नाल कॉन्टैक्ट कर सकते हो रॉयल डिजिटल तो। 647-201-1313 दे उपर कॉल करके तुसी अपने घर दे विच इंटरनेट लगवाना होवे या तुसी अपने सेलफोन दे लई कोई डील देख रहे हो, रॉयल डिजिटल दे नाल कॉन्टैक्ट करो। $55 दे विच हाई स्पीड अनलिमिटेड इंटरनेट लगा रहे ने, 1.5 GB डाटा, 6472011313 दे उपर तुहाडी गलबात हो सकती है। ते लो फिर फरमाइशी गाना तुहाडे लई सुनाइए मोहम्मद रफी जी दी आवाज़ दे विच, इंजॉय करो ते सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो।

0: हेलो एम 5:30 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो
1: टुडे विच लाइव गलबात कर ले हुणे कॉल करो 905-564-6444
0: 905-564-6444

0: 980 Martis Drive, Unit 9 Mississauga.
1: कनाडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
2: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
3: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो तो सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381 ते।
1: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे। हुणे ही सिमराज सिंह सिद्धू नूं कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381।

0: फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तो सीधे अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015
1: टीम सिद्धुला के आए ने कैलडन शहर दे विच द गोर रोड एंड मेफील रोड ते एक नमी मास्टर प्लान कम्युनिटी जेदे विच 2500 तो भी ज्यादा नमे टाउन हाउसेस सेमी डिटैच ते डिटैच कर तैयार होंगे 2027 एंड 2028 दे विच ट्रेडिशनल टू स्टोरी फ्री होल टाउन हाउसेस बट डी बैकयार्ड ते अनफिनिश बेसमेंट नाल सिर्फ 7 लाख डॉलर दी रेंज दे विच इन द 700s बहुत जल्द आ रहे ने सेमी डिटैच कर 8 लाख दी रेंज दे विच इन द 800s रिलीजिंग वेरी सून सब तो खास डबल कार गराज वाले बड़े डिटैच कर सिर्फ 9 लाख डॉलर दी रेंज दे विच इन द 900s रिलीजिंग वेरी सून पब्लिक रिलीज तो पहला बेस्ट लॉट एंड लॉट कॉर्नर लॉट दे लिए जल्द तो जल्द संपर्क करो एट 416-302-0016 416-302-0016 416-302-0016 कैलडन शहर दे विच द गोर रोड एंड मेफील रोड ते 2500 तो भी ज्यादा घर तैयार हो रहे ने 2027 एंड 2028 दे विच कॉल टीम सिद्धू 416-302-0016 416-302-0016 टीम
0: दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस का लाइसेंस लेना बहुत सौखा है पर सही सपोर्ट तो बिना काम करना बिल्कुल सौखा नहीं इंश्योरेंस फील्ड दे विच हजारां लोकी आउंदे ने ते हजारां ही जांदे ने पर सिर्फ प्रोफेशनल एडवाइजर्स ही टिके रहंदे ने
2: जेकर तुसी एक लाइसेंस इंश्योरेंस एडवाइजर हो या फिर तुसी भी लाइसेंस लेके अपने क्लाइंट्स दे लई सही पॉलिसी ते प्रोफेशनल काम करना चाहुंदे हो तां फिर अज ही टॉप फाइनेंशियल दे सिमराज सिद्धू नाल संपर्क करो
0: कॉल 416-457-3381 416-453-3381
2: टॉप फाइनेंशियल दा नवा ब्रैम्पटन ऑफिस एयरपोर्ट एंड क्वीन दे बिल्कुल नजदीक 70 डेल्टा पार्क बुलेवर्ड यूनिट 11 ते लोकेटेड है जिथे एडवाइजर्स लई बिना कोई फीस बिना कोई चार्जेस तो मॉडर्न ऑफिस अते फैसिलिटीज अब पूरा एक्सेस है
0: टॉप फाइनेंशियल दे इंश्योरेंस एडवाइजर्स दे लई पहले ही दिन तो हाईएस्ट कमीशन पैकेज डेली इन ऑफिस ते ऑनलाइन ट्रेनिंग ते हर एक मेजर इंश्योरेंस कंपनी दे नाल डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट दा भी प्रबंध है
2: हां इंश्योरेंस एडवाइजर चाहे नवे हो या पुराने चाहे एक्टिव हो या पार्ट टाइम या फिर तुसी सब तो वधिया ब्रोकरेज दी भाल विच हो अज ही संपर्क करो टॉप फाइनेंशियल दे सिमराज सिद्धू दे नाल 416-457-3381 416-457-3381